0: ସତ୍ୟ ସାଇବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ତଥା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମୀୟ। ସତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु आजर बंदना। प्रथमे कंठदान करिछंती सिंघारी श्याम सुंदर कर ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଲୋକନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଦୈତାରି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦର୍ପ ଦଳନ ଦୁଷ୍ଟବ ଦୁଃଖହାରୀ।

0: आठ दसटी स्थानरे छोट सढ़ई किंवा माटी किंवा प्लास्टिक उपरे रखी गच्छ डाळरे पांच फुट उच्चरे झुलाई दियंतु। एहा करिबा द्वारा फळमाछीगुडिक एही विष थोप प्रति आकृष्ट होई सेथिरे पड़ी मरीजुबे। वर्तमान समय दिनर तापमात्रा बढ़िबा सह ग्रीष्म लहरी प्रभाव हेउथिबारु पोखरीर जलर गभीरता सतेज पानी भर्ती करि एक मीटर बढ़ाई दियंतु। दानार परिमाण 10-20% कम कर दियंतु एवं पोखरी भितरकु थंडा पानी प्रवेश पाई व्यवस्था करंतु जेपरकि पानीर तापमात्रा 13-18 डिग्री बजाय रहिब। गाईगोरुमानंकु परिष्कार ओ दरकार अनुजाई पानी दियंतु। सकाळ एवं संध्या समय घास चरिबा पाई दियंतु। दिनरे दुई थर गाधोई दियंतु। किछि समय ओदा झोट बस्ताकु झरका एवं कबाटरे लगांतु। भल वायु चलाचल पाई फ्यानर व्यवस्था करंतु। सकाळ समय कम खुआंतु एवं संध्या समय अधिक खाइबाकु दियंतु। कुकुडा रहुथिबा घरे ग्रीष्म ऋतुरे फ्यान ओ फगरर व्यवस्था करंतु एवं सेही घरे उत्तम वायु चलाचल करुथिबा सुविधा करंतु। जलरे विटामिन सी ओ इलेक्ट्रोलाइट मिसाई देबा सह कुकुडा मानंक ठारे ग्रीष्म तापजनित मृत्यु संख्या ह्रास करंतु।
1: चासी भाई और भौणी मिलता पापागर पूर्वाभास जनाए जे आसंता 24 घंटा मध्य ओडिशार राज्यगुड़िकर गोटे दुईट स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा बा बिजुली घड़घड़ी पवन सह वर्षा होबार संभावना अछि। सतर्क सूचना जनाए राज्यर मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर और कटक जिलार गोटे दुईट स्थान में अपराह्न किंवा संध्या आड़ बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबा सह घंटा 50-60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अछि। सुनिले पानीपागर सूचना आकाशवाणी कटक। समय वर्तमान सकाळ 6:55 होबाकु जाउछि। आमर परवर्ती कार्यक्रम संस्कृत रे संवाद रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रु किछि क्षण मध्यरे।
2: एएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पंचमे अंतिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम

0: आगतवान् भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.7 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु अमर आज कार्यक्रम सूचना आमर स्वास्थ्य प्रचार करिबु सकाळ 7:10 आम मस्तिष्क संपर्क कहिबे डाक्टर रवींद्र कुमार दलाई। प्रभात परिक्रमा सकाळ 7:25 कथिका सकाळ 7:35 शुणिबे अग्रे बह्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानुह आलोचक डाक्टर शरत चंद्र परिडा। सकाळ 7:40 राग मंजरी कंठशिल्पी संतोषी प्रसाद मिश्र संगीत हेमंत कुमार त्रिपाठी ओडिया आलबम गीत सकाळ 8:30 वैदेहिक विलासर 29 भाग सकाळ 8:45 गीत गीतिका सकाळ 9 दिन 10 प्रचार करिबु नाटक एबे नुहे तो केबे नुहे रचना हरिहर मिश्र प्रयोजना झरणा दास आम गीत दिन 11:10 आधुनिक गीत गाइछन्ति गीतारानी दास आभा पंडा एवं वंदिता दास। दिन 11:30 शुणिबे ओडिसी कीर्तन परिवेषण करिछन्ति वासुदेव पाणी एवं साथी श्रोतांक एसएमएस द्वारा हिंदी एवं ओडिया चलचित्र गीतर कार्यक्रम मंजुळ मध्याह्न दिन 12 नारीमल प्रचार करिबु दिन गोटे 20 आलापरे शुणिबे तरंग बाला त्रिपाठीक सह साक्षात्कार श्रोतांक एसएमएस माध्यम अनुरोध ओडिया आलबम एवं ओडिया लघु संगीतर कार्यक्रम चिरहरित अपराह 4 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अपराह 5 युववाणी अपराह 5:30 संध्या 6:10 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 23 भाग प्रचार करिबो। संध्या 6:30 आकाशवाणी जयपुर केन्द्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम उज्जवल आम देश शुणिबे। राति 7:25 अनुगुल जिला संपर्क में शुणिबे जिला हालचाल कृषि संसार राति 7:30 एथिरे महुचाष और आत्मनिर्भरशीलता संपर्क शुणिबे डॉक्टर चित्तरंजन शतपथी सहित आलोचना आसामी भाषारे अहमिया भाषारे गोष्ठी संगीत शिक्षा राति 8:30 श्रोतांक अनुरोध रे हिंदी एवं हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करिबु राति 10:30 सुनिले आमर आज कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनिपरिबे टिके परे।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में

0: दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हों। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: हमें जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार

0: अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचार के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य

0: पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is
2: Suparna Bhatia
3: from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी

गोल्डन वटल जापान चेरी ब्लॉसम इत्यादि तबे मल्ले फूल महकुथिबा बेले क्यारियन फूल उत्कट दुर्गंध सृष्टि करे किंतु आमे दुर्गंध आड़ जीवानी खराब आड़ जीवानी भल आड़ जीवा अर्थात मल्लीर महक आड़ आगे जाए जीवन को आउ संपर्क को मधुमय करिबा सरस सुंदर करिबा।

0: ने माँ तो पाई कोला छोड़ आने चु अरे मो खंडा डाटे डेले
1: ने ने ने तो खंडा
0: हे माँ हे धरती माता
2: अरे अरे घर रे क्यों नहीं ठीक असलन रे
0: हाँ आमो ठाकुरानी तो को पसंद तो करो माँ आमे तो ठोकी नू ए ए ने ने माँ
3: पिलाटी तो ये पढ़े बच्चा उठवा क्या
4: पिलाटी को मत दे दो

0: अरे ए कौंतिया जानी खबरिया पहरिया कुआडे गलो रे
1: बाबू बाबू हां तुई तुई मोर देवता बाबू तुई सब जानिछु ए गां लोके आमो कळुरो कोंळा बक्ते पिला को छोडी नै पोली दबा को बसीथिले तुई नथिले मोर चक्ति मो पिला केही बंची नथांतु तुई सब देखिछु बाबू तुई सब जानिछु मोर पिला को 22 वर्ष धरि आमे खुजुछु चक्तिर मुंडो सेई दिनु ठीक नै बाबू कहीदे बाबू मोर छियो काई से पागली परी कांदुची मने मोर तार छुआ को खोजुची बाबू
0: अरे तमे दळटा जाको एठी कोन करूचो
1: तथे मुई खोजुथिली महापुरु तू तो केते गा गा गुली केते बुझौचु पोडु बली दबा पापो निशा खाइबा पापो पोडु चास करिबा पापो
0: बेआइन बेआइन सबु बेआइन काम करिवो आउ मते देखिले लंबो होई गोड़ तळे पड़ी क्षमा मांग
1: तोर गोड़ धरसी बाबू तोर
0: अरे अरे कोन हेइछि मिछुटा रे पादो धरचु उठ उठ उठ
1: तोर पादो धुले मते दे मेरदा बाबू तोर पादो सेठी पड़िला बोली मोर जीव बंची गला
0: ओहो सनातन तू उठिलु उठ उठ उठ
1: तुई मते चिन्हिलु बाबू मोर झीओ बंचीसी बोली तुई मते कहिथिलु जगति को केते मध देइथिलु
0: हौ हौ हौ तू उठ उठ ए मधुसूदन ओ एई सेई सनातन अपगंडटा
2: एई सनातन जे छुआ बिक्री करी पेट पसे
1: नाही बाबू नाही नाही
2: कहिला कोन की बळी पकेबा को लोके आकु बाध्य कले अरे से झीओटा कुसना बळी पकेबा को लोके बाध्य कले या भितर केतुला छुआ बिक्री कर सारलुनी
0: अपगंड गुड़ाक टिके विचार नहीं कि आचार नहीं जंगल रही पशुठ भी हीन आंस पड़ी छुआ बिकी पैसा नहीं जदि लोक अकाल दुर्भिक्ष रु बची जाऊ था
2: ना ना ना ना एठी मते बदनाम करबा को धंधा आरंभ कर दे सब नुए
1: नाई बाबू मिर्धा बाबू तु ये कथा कहू
2: चुप चल जाए तू जा
0: मिच्छु को एमान का नाम देछि अपगंड
3: गंडरो एमने कोउ दिन अपगंड को खसिले के घनश्याम दादा
0: अरे मां बन्नो जा तू एठी कोन सुनचू
2: कोन देखुचू एठी मां
3: नाटक रो आरंभ मात्र हेची जानिबा कष्ट भितरे की दृश्य अछि
2: की दृश्य एठी देखलु की
3: अति पुरातन आदिम काल रो एको दृश्य आम आगर अभिनित होई चली गला
0: आउ आमे पहुचिबा मात्र से दृश्य घरे हजि गला तमे सब बोधवे कल्पना रे भासुतिलो
4: से माने भी कल्पना रे भासुथिले ना कोन बनजा देवी
3: से माने तांको अवचेतन रो भाषा गुडी को उच्चारण करूथिले
2: कोन कहूथिले से माने
0: प्रलाप करूथिले अपगंड गुडाक
3: से प्रलाप धीरे धीरे सत्य रे परिणत हबो जेमिति आलू जाई अंधार आसीछि सेमिति दिने अंधार जाई आलू आसीबो
4: ओह भलो हला आपण माने

0: अरे बनजा कौन खोज क्या
1: देखु तो ये ना
0: तमें तो अच
1: हाँ मुझे बोली तो ये गच्छ अच्छी जह्न अच्छी टिके आगुरु से माने मो संगे मोर परिचय करी दउथिले
0: ओ तम परिचय तुम पाखरे नाही बोदे
1: ना मोर परिचय आउ किछि लंबा डिग्री स्टेटस स्कोर छापा ता उपरे नाही एक भिन्न अभिज्ञता से तार परिचय खूब गभीर
0: बाहर सहित भीतर रो अंतरंगता आनिया पई एठी चली आस्तिलो नै मु तम एकात्म बोध आउ एकाग्रता भांगी देली बोदे
1: विशृंखला ही मते बेसी श्रृंखलित आउ दृढ़ नीति संपन्न करी दिए संपद बाबू
0: बनजा तमे इत्ते सुंदर चिंता करी पारो बोली ए उपत्यका सहित तमर सौंदर्य बेस खाप खाई जाउची
1: हेमिति बोधे मते केही बुझी नहंती जहां आपण एई मुहूर्त रे मते पूछी पारचंती
0: मिछ भवनी मु सत कहूची जे निजकु ठीक बुझी थाए अपर को भी ठीक बुझे
1: थरे संपद बाबू परस्पर को थरे एमिते बुझिबार मुहूर्त मिली गले गोटे सुंदर बुझामणा चली आसे तापर आउ किछि समस्या रहिनी
0: एठी के केमिते चली आसिले निजे भी जानिनी
1: ए बन भुई ए पत्रहीन निश्चुप वृक्ष तळे पळासर तोटा सबु छळनार स्वप्नर इंद्रधन गुडिक सुंदर मिथ्याटी भळे हठात चेई उठन्ते आम भितरे आउ पुणि नीरवरे सोइ जान्ते
0: ए राति अद्भुत स्वप्न रे चेई उठिछि जेमथि कहीं तम आखि दिटा देखे
1: कौन देखिलो
0: ना मु केवल मते ही देखुछि मते बस
1: आपन को सामने रे आउ केही नै
0: ना मु छड़ा

0: ए हाथ मुद्रा देख लो एमती ए रंग
1: हाँ बाबू अच्छा बाबू एटा केते दाम हब
0: हाँ हजार पड़ो अच्छा कहल कहीं पथटे पाइचु
1: हाँ एमती क्या तो हलदिया टिके फिक्का हलदिया
0: पोखराज
1: एत्ते बड़ दि हाथ पापुले मिसले भी बड़ एत्ते बड़
0: केते बड़ कहलु
2: ए फेचकामी छड़े देबी उड़ी बस।

0: ମମତା ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि ₹1000 से ₹2499 तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। ₹2500 से लेकर ₹7499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

0: 63 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଚେତିନାର ସିମେଣ୍ଟ ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ୍।
1: QR कोड स्कैन करंतु 5000 रो कैशबैक पांतु बा आज बढ़िया दिन
2: हसिला UPI पिन एंट्रिंग केवल टंका पठेबा पई उद्दिष्ट
3: RBI कहे
2: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु।
4: अभुलागित कार्यक्रम रे प्रचार करूचु आधुनिक गीत प्रथमे कंठदान करिसंती गीता रानी दास शिल्पी कंठरे गुरुकृष्ण गोस्वामी रचना

0: क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाइ मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्ये चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्ये चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: अभुला गीत कार्यक्रम रे परवर्ती गीत द्वैत कंठरे गाइछंती आभा पंडा एवं वंदिता दास गीत रचना मीनाक्षी देवी

ଗାଉଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ବଜାଉଛନ୍ତି ବଲ୍ଲକି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧିର ସାଧକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସ୍ଫଟିକ ଶିଳା ଉପରେ ବସି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ରାମ ନାମ କଣ୍ଠରେ ବାଜିଲା ଭାଗିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚୁଛନ୍ତି। नारदंगु पचारिले देवर्षि आज एते विभोर काहेकि ना बहुत दिनर गोटे कार्य असाध्य होइकिथिला मु साधन करिछि ना कोन ना कैवल्य मु पाइजि वैकुंठरु हातकु पाति देले भगवान शंकर कैवल्य टिके देइ देले से कैवल्य को पाइला परे शिव भी होला होइगले डम्बरु बाजिला आज्ञा नारदंगर वीणा बाजुछि नाही लक्ष्य डम्बरु रो स्वर कंपि।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ଭାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों

0: दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe economic corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political

0: U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration, and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई

0: बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है

0: के मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
1: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखी साइति।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

0: शब्दंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है।

0: यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
0: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसीलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
6: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
9: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls...
6: Crow!
3: Absolutely right.

0: दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे।
2: हुँ?
1: मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा मालिका का तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों मालिका का, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो,

0: लो मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी बेटा।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
0: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
0: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: शुणुले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
3: मेरे प्यारे देशवासियों कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खाद्य का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।
1: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित होनिशाठ दशमिक छह मीटर तथा नौश बास्तरी किला हट जगे।
2: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट, हले एपर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सैथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: कोन रीमा घरे सोलर लगाई देला?
6: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
5: चिंता नहीं माने?
6: हाँ अपा, सोलार करी देले मासक को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीव।
5: सतरे?
6: खाली सेति कि नु? हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
7: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
8: पशु पक्षी को अंशुघातरु रक्षा करिबा पई किछि उपाय।
9: अंशुघात न हेबा पई दिन 11टारु अपराह्न 3टा पर्यंत टाण खरारे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहर को न छाडी गुहाळरे किंबा छाई स्थान रे रखंतु।
8: पशु पक्षी को स्वच्छ ठंडा पानी पीबा को दियंतु एवं प्राणी को विश्राम स्थान बा कोठरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
9: गुहाळ कबाट ओ झरकारे ओदा अखा झुलाई मझिरे मझिरे पानी सिंचन करंतु।
8: बुला पशु ओ पक्षी को अंशुघातरु रक्षा करिबा पई घर आगरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
9: अंशुघात हेले पशुपक्षी माने किछि खानती नाही, पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुअंती, पाटीरु ओ नाकपुडारु फेण बाहरे ओ समय समय जीभ पदा को बाहरी आसे।
8: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत ठंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु। प्रचुर ठंडा पानी पीबा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकंक सह परामर्श करंतु।
9: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु।
8: मत्स्य ओ प्राणी संपद विकास विभाग ओडिसा सरकार।
1: जुबवाणी।

0: हे भगवान मु तुमरो की दोष करितली मते काही कि आज एते बड़ो शास्ति देलो मो स्त्री मो साथी माने मो गुटु केमिति चलुथिबे से माने कोन करुथिबे केमिति चलुथिबे से माने हे प्रभु ए विस्तीर्ण जलराशि भितर मते मुकुळै दियो प्रभु मते मुकुळै दियो मो स्त्री पाखु मो जीवि मो पुओ कोन करुथिबो मुकुळै दियो प्रभु
1: अरे हे बबुआ हमारा नाम है ठाकुर तपे मुकले दई को निज गुड़ रे मु कुरारी मारी बे कुरारी हां
0: सुनो तो आ गया ठाकुर आ गया मु आपन को गोड़ तले पड़ के आ गया मते छाड़ी दियो तू मते कहो तू कहो तू मते मु आपन को रखी दुस करी छी मते काहे आनी एते दूर रे रखी चंती स्त्री पिला छुआ मैंने मत खोजुवे मत के खोजुवे मो साथी मैंने मत छाड़ी दिखा ठाकुर आज्ञा मत छाड़ी दिंतु मुझे कि दोस कर
1: जरूर कर इलाकार राजा मु आर फायदा तू मो बस्ती लोक बसईचु ताकि तुम मरी आणले मुझे सप्लाय करी आो बेपार बढ़े आई आशे मुहर ठू एत दूर यही द्वीप रुचु मो आशा को मटि मिसई देवा बस लोक को एकजुट करू नेता हबु ना मुखिया हबु आने तुम सांगे लड़बु चार भितर तोर नेतागिरी चढ़ाइबी हाँ से
0: कथा दूचा दूचा सब शर्त मु रखी हेले मते छाड़ी दियंतु आज्ञा मो स्त्री पिला को पाखु को मु जीवी आज्ञा
1: नाही रे बापा नाही जो गछरे थरे फूल कणिलाणी से गछ आउ फळंती।

0: अरे ए बुढ़ी माउसी ए ए काठ कोन तू उठाई परबू रह रह मु जाउची तोर तो बयस हेलाणी एते काम करियो तो के कहूची आ उठे परबूनी चली आइची धरिया पाई देलु देलु देलु से काठ देलु
1: गुड्डे भगवंतर मंगल करंतु तो बाकु भलरे भलरे फेरे आनंतु
0: कोन कोली माजी माउसी मो बाकु उठे छी तू जानि छु जानि छी माउसी कहनु कह
1: न न न इरे बापा तू तू जा मु जाउ छी खुद उठे की बसेबी
0: माउसी माउसी सुन सुन माउसी
1: हाय हाय मरी जाओ थाए कि सबुठी खोजुची मोर नजर हेले एठे मोर नगर
0: ए पूजा तू तो बाटे जा मु मो बाटे जाउची तू कहि मत कहू मो बाटे कहि गलु जा जा जा नगर चल
1: हाय हाय बस्ती लोकंकर एते सारा काम करूछो हेले मो पई टिके भी समय नै
0: देख पूजा मोर बाटा पूरा अलगा मोर मकसद पूरा अलगा तू ही मोर साथ चली परिबुनी
1: काहे के चली परिबिनी तू थरे हातरे हात रख गुडू देखिबु मरिबा जाय तोर साथे रहिबि रे
0: नाही पूजा तोर हाते मोई हात देइ परिबिनि लो मोर बा के मते खोजिबार अछि आ सेहिटाई मोर मकसद ताकु खोजिबा पई मु सबु किछि कर देबिलो ताकु छाडी मोर आउ किछि दरकार नै आ सुन ना तू ए बस्ती रो सबुठ भलो छियो देखिबु तोर लागि गुटे राजकुमार भलिया बरटी आसिबो घोड़ा चढ़ी करी आसिबो आ तते नै पळैबो
1: नाही रे मोर तुई दरकार तुई मोर हीरो तुई मोर राजकुमार
0: ए छ मते आसरा करिबु तो सारा जीवन बाडू होई रहिबुल झियो।

0: तमे तमे सबतरे हसी छो
1: हे मां भवानी हेटे मुंडिया मारिली नो मां हे मां भवानी भवानी मां मो डाको सुनि चंती हे मां
0: हेले तमे आसिलो हे सोना भी आसिले आउ गुडू
1: मो गुडू काई मो धनो काई अरे अरे तमे माने नीरव कोन पई रहुचो मो पुओ काई जवाब दियो ए सोना मो गुडू काई कांदु जो
2: मो पारी ले रे मा मुखिया आगे गुआड़ी ले ले गुटको

0: ଯୁବବାଣୀ ଶେଷ ହେଲା।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 23ତମ ଭାଗ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶୂୟନ୍ତାମ ପ୍ରବାଚକ ପୁନୀତ ତ୍ରିପାଠୀ। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुम्बई इण्डियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मिलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति। अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्।

0: क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु आकाशवाणी जयपुर केन्द्र प्रस्तुत उज्जवल मदेश प्रयोजना मनोज कुमार पूजारी उपस्थापन अच्छा संजीवनी सुधा पट्टनायक।
2: विद्या अटै महाधन बालके करे उपार्जन एकथा आमे समस्ते कहिथिबार सुनि थाउ। प्रकृतरे पाठ पढ़िले आमे अनेक कथा जानिपारिबा, सिखिनथिबा कथा मध्य आमे पाठ पढ़िबा द्वारा सिखिपारिथाउ। तेबे जेत्ते अधिक आमे पढ़िबा सेत्ते आमर जानिबार आग्रह बढ़िबो। विद्या होउछि अमूल्य, विद्याकु आमे कहा सहित तुलना करिपारिबा नाही। समाज ओ सभ्यतार अग्रगति विभिन्न स्तर दे संगठित होइछि। विकासर आधार ओ प्रेरक केबे कृषि केबे शिल्प त केबे आउ किछि हेइथिबा बेले वर्तमान आमे पहुँचिछे ज्ञान भित्तिक समाज व्यवस्था रे। ज्ञान ही वर्तमान प्रगतिर मूल पुंजी। जहाँ पाखरे ज्ञान अछि ता पाखरे सबु अछि बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। विद्या ही करिपारिबो व्यक्तिकु विश्व विजयी। ज्ञानकु ग्रहण करिबा ही विद्यार मूल लक्ष्य। जने ज्ञान हासिल कले वास्तवरे से निजर अज्ञानता को बेसी चिन्ही पारे। जेउ ज्ञान अज्ञानता को देखाई पारे एवं तार विकास पई सशक्त ओ सक्षम कराए ताहा ही असल ज्ञान। एवं एही ज्ञान प्राप्ति परे व्यक्तिर जीवन रे परिवर्तन घटे। तनु समस्ते पाठ पढ़िबा आउ आगको बढ़िबा। तेबे खाली जे पाठ पढ़िबा आउ आगको बढ़िबा ता नहु, ता सहित निजे निज शरीर रो जत्न नेबा आउ आखपाख को सफा सुथरा भी रखिबा दरकार। कहिबा कथा हला स्वच्छता प्रति भी ध्यान देबा। तेबे आज आसंतु विद्यालय रे स्वच्छता शिक्षा केमिति दिया जाए ए संपर्क रे कथा हबा शिक्षक अनिरुद्ध विश्वाला सहित।
3: सर नमस्कार।
4: नमस्कार मैडम,
3: कार्यक्रम को आपन को स्वागत करूछ सर।
4: धन्यवाद मैडम।
2: तो विद्यालय रे स्वच्छता शिक्षा केमिति दिया जाए?
4: वर्तमान समय रे एटा बहुत जरूरी हो जाय छी। समस्ते स्वच्छ परिवेश रे जदि समस्ते न बढ़िबे तब निश्चित भाबे सेमाने विभिन्न प्रकार रोग वैराग भीतर गति करि
3: सर।
4: एटा पिला बेलु आम घरे आमर पितामाता शिखि थांती, परवर्ती समय रे आमे याकु शिखिला परे आम निज जीवन रे आमे याकु प्रयोग करू। ता सहित वर्तमान विद्यालय मानक रे नियमित भाबे पिला मानक ई स्वच्छता विषय रे शिक्षा दे जाउछ। जो रोग जीवाणु हमती पानी जमीवा द्वारा मान कौट मलमूत्र जमीवा द्वारा जो रोग जीवाणु आम शरीर को पलि आसपारे ना, जोटा आम करोना समय आप देखते हैं मैडम। जमती आम स्वच्छता को मुख्य भाव से ग्रहण कराइला आम स्वच्छता जदि आम क्लीन रहा आम करोना जीवाणु आसब ना आम पाक आसब ना। तेणु से परिप्रेक्षी में कह शारीरिक और मानसिक सहित परिवेश को सफा रखा को स्वच्छता बुझे
3: सर। आपण जो स्कूल रे पाठ पढ़ाऊ पिला स्वच्छता विषय केमी कौन बुझे स्वच्छता कौन सब मान से शिक्षा दि जा प्रकृत कौन विद्यालय स्वच्छता शिक्षा दरकार कि?
4: मैडम निश्चित भाव पिला पर विद्यालय को आसती जोटा कि शिक्षण जो कार्यक्रम आरंभ हुए जीवन आरंभ हुए विद्यालय ही आरंभ हुए। तेणु प्राथमिक स्तर में पाटी परिवेश कु सफा रखा स्वच्छता विषय किसी जानव निश्चित भाव परवर्त समय सी आम कार्यकारी करजे सफा सुतरा रहा सहित आम परेश सफा सुतरा रखा द्वारा आम सुरक्षित रही पार और मानव समाज बहुत दिन बंची रही पार। तेरे यही विषय को विशेष भाव में विभिन्न पुस्तक मध्यम दि जाए विद्यालय पाठ्यक्रम सहित आम नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम सब रही विद्यालय स्तरीय जो पिला मानकर मंत्रिमंडल विभिन्न प्रकार स्वच्छता उपरे अभिभाषण कार्यक्रम रहुची डिबेट कंपिटिशन जोटा आमर कहते सहित पिला मानक क्विज कंपिटिशन करुचु चित्रांकन प्रतियोगिता करुचु एवं प्रत्येक शनिवार प्रेयर क्लास रे नियमित भाव शारीरिक भाव सुस्थ अच्छा परिष्कार अच्छा ना नहीं कपड़ा सफा अच्छी ना नहीं नख जो चुट्टी ठीक ठाक कटाई ना ना काटिचना ना तेनाली श्रेणी शिक्षक माने नियमित भाव चेक करती जहाँकि पिला मान भर सचेतनता वृद्धि पाउची। आम मध्य लक्ष्य करुचु धीरे धीरे स्कूल परिसर सहित से भल भाव ग्रहण कर प्रत्येक श्रेणी शिक्षक मान जो मान रही चेक करती विशेषकर आम पीटी सार जी अच्छा सी प्रत्येक शनिवार पिला चेक करती क्लासरूम आम नियमित भाव पाठ्यक्रम पढ़ला समय जदि से टपिक किसी आसूची आम पिला से विषय कही था जदि कौन समय

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी
1: मु काली मा पुतुरा घर को जाई के आसीली देखि कि आश्चर्य हेली कि से माने दिन जाको एसी लगाउ छंती सब बेले वॉशिंग मशीन चलाउ छंती घरे दीटा फ्रिज अछि किंतु तार बिजोड़ी बिल जानिछो केते आसुछि जीरो मु पचेरी लारु पुतुरा कहिला
2: दादा सब से ऊपर वाला रे दया माने सोलर पैनल रो
1: मु भाबिली एबे तो लगैबा कुही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजोड़ी योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in रे

0: ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
1: ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଇସ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍ କି ଇସ୍ ଜୋନାଲ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର କନ୍ଫରେନ୍ସ ମେ ଆପ୍ ସଭି ମହାନୁଭାବ କା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ଇସ୍ ଆୟୋଜନ କା ପ୍ରେରଣା ହମାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଦି ହେ କି ହମ ଲୋଗ ଜୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରତେ ହୈଁ ଉସସେ ପହେଲେ କି କ୍ୟୁଁ ନହିଁ ହମ ଲୋଗ ଜୋନ୍ସ ମେ ଜାକେ ଜୋ ହମାରେ ରାଜ୍ୟ ହେଁ ଉନକେ ସାଥ ମିଲକର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ଦୋ ପେ ଜୋ କୃଷି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୈ ଉସ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେଁ। ତ ଇସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହମାରା ପ୍ରୟାସ ହେ କି ଜୋ ହମାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଁ ଉସକୋ ଆପକେ ସାମନେ ରଖେଁ, ଉସମେ ଜୋ ପ୍ରଗତି ହୁଈ ହେ, ଜୋ ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର କି ବିଶେଷତାଏଁ ହେଁ ଔର ଯହାଁ କି ଜୋ ଚୁନୌତିଆଁ ହେଁ ଉସ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେଁ। ଔର ସାଥ ହି ସାଥ ଜୋ ରାଜ୍ୟୋଁ ମେ ଇନୋଭେସନ୍ସ ହୋ ରହେ ହେଁ, ଜୋ ଉନନେ ଅଚ୍ଛେ କାମ କିଏ ହେଁ ଉସକୋ ଭି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କା ଅବସର ମିଲେ, ତାକି କ୍ରସ୍ ଲର୍ନିଂଗ ହୋ ସକେ, ରାଜ୍ୟ ଭି ସିଖେ ଔର କେନ୍ଦ୍ର ଭି ସିଖେ ଔର ଜୋ ଉସମେ ଐସି ଚିଜେ ଜୋ ଦୂସରେ ରାଜ୍ୟୋଁ ମେ ସ୍କେଲ ଅପ୍ କି ଜା ସକତି ହେ, ତୋ ଓ ସମ୍ଭାବନାଓଁ ପେ ଭି ଯହାଁ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋ।
0: ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୃଷିର ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ,
2: ଓଡ଼ିଶା କେ ଲୋକପ୍ରିୟ କର୍ମଠ ଔର କଳ୍ପନାଶୀଲ ମସ୍ତିଷ୍କ କେ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀ, ହମାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର କେ କୃଷି ଓ କିସାନ କଲ୍ୟାଣ ଆଦରଣୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ଜୀ, ହମାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ଆଦରଣୀ ଭାଗିରଥ ଚୌଧୁରୀ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶା କେ ମାନ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଔର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେବଜୀ, ବିହାର କେ ୟଶସ୍ୱୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଜୀ, ଛତିଶଗଡ଼ କେ ହମାରେ ୟଶସ୍ୱୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀ ରାମ ବିଚାର ନେତାମ ଜୀ, ଔର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ କେ ଖାଦ୍ୟ ଔର ଆପୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଜୀ, ଆତିଶ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଜାଟ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେ ଭି ସଭି ଅଧିକାରୀଗଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କା ଭାତ ଜଗତ ପସାରେ ହାତ, ଲେକିନ ଭାତ ଭି ତ ପୈଦା କିସାନ ହି କରତା ହେ ଔର କିସାନ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦିତ କରତା ହେ, ଇସଲିଏ ଅନ୍ନଦାତା ତୋ ହେ ହି, ଲେକିନ କେବଲ ଅନ୍ନଦାତା ନହିଁ କିସାନ ଜୀବନଦାତା ହେ, କ୍ୟୁଁକି ଅନ୍ନ ପୈଦା କରନେ ବାଲା ଜିନ୍ଦଗୀ ଦେତା ହେ। ଆଜ ଜବ ହମ ବୈଠେ ହେଁ ये केवल कर्मकांड के लिए नहीं बैठे कि कार्यक्रम करना तो कार्यक्रम कर लिया, एक तलफ के साथ बैठे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध शक्तिशाली आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के लिए कृषि आधार है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। हम 140 करोड़ के का देश है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर खाद्यान्न कैसे मिले। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं, पांचों राज्यों के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। अन्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है, अब धान के उत्पादन में तो उड़ीसा हो छत्तीसगढ़ हो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, बिहार कृषि रोड मैप बनाने में अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की कृषि को और आगे बढ़ाने में, और आज हम इसीलिए बैठे हैं। कृषि के सामने जो चुनौतियां हम उन पर भी विचार करेंगे, हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उद्योगों को ठीक से इंप्लीमेंट करना है। देखिए तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप, नंबर एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए, कल कोई देने से इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप। जैसी परिस्थितियां आज हमको समझ के चलना पड़ेगा, इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे, उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुखी जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हमारे सामने जो समस्याएं बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक,

0: हम सबको मिलकर काम करना है। वह हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं, पूर्वी भारत की आबादी घनी है। अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से मैं फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपेरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से हैं, जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाएं, प्रेरित करें, जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। तीसरी चीज, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद। 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी, खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है। इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। कई जगह पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के, पीएम आशा के अंतर्गत। मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे, आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अवधि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसका फायदा यह होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा में पैदा हो रही है। क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे, तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है। और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं, साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें, एक साथ 4-4, 5-5 राज्य आएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं कि जो अगर बारिश में गैप भी हो तो टिक जाए। उड़ीसा जिस तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी, मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आपने जो सहयोग किया और कहा कि आइए, जगन्नाथ महाप्रभु की धरती पर आपका स्वागत है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सम्मेलन रे ओडिशा मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ

0: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले दलहन तिलहन अर्थात पल्सिड और पल्सेस में हमको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारे किसानों को इसी साथ पर ले जाएं और हमको इसका बहुत जरूरी भी है। आज हमने जैसे ओडिशा में हमने किसानों को बोनस भी बोलते हैं लेकिन हमने उनको इनपुट असिस्टेंट के नाते पैडी पेकरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं और एमएसपी के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेतीबाड़ी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक सीएम किसान सम्मान निधि, तो 6000 पीएम किसान और 4000 हमने दो किस्ती में सीएम किसान दे दिए और देते हुए 10000 पर ईयर में हमने जो किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है और हमने एक डिसीजन ले लिया आज कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियर्ण योजना के तहत मिलेट्स बेहतर उत्पादन अमृत अर्न योजना के तहत ऑर्गेनिक राइस उत्पादन आज हम कर रहे हैं। मिलेट उत्पादन से पानी और खाद का व्यवहार बहुत कम होता है और लोगों के पुष्टि साधन के लिए ये एक सुपर फूड है। ये खासकर हमारे आदिवासी इलाकों जहाँ ज्यादा खेती किया जाता है इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अधिक ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोल्ड स्टोरेज योजना हमने आज शुरू कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी दे रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में निवेश करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे उत्कल चरणी।
1: उद्घाटन उत्सव परे द्वितीय अधिवेशन रे पूर्व क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकारक प्रतिनिधि माने भिन्न भिन्न कृषि भित्तिक विषय उपरे विशद आलोचना पूर्वक सेमानकर अनुभव ओ आभिमुख्य उपस्थापन करिथिले। ओडिशा सरकारक तरफरु कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभागर सचिव श्री सचिन रामचंद्र यादव कृषि संप्रसारण उपरे होइथिबा कार्यक्रम संपर्करे तथ्य उपस्थापना करिथिले। सेहिपरि पश्चिमबंग सरकारक पक्षरु कृषि विभागर प्रमुख सचिव श्री ओंकार सिंह मीना मंजी उत्पादन पई होइथिबा सर्वोत्तम पद्धति संपर्करे आलोकपात करिथिले। परे परे झारखंड सरकारक तरफरु कृषि विभागर उपनिर्देशक श्रीमती कंचन कुमारी एफपीओ लेड भ्यालू चेन्स एंड एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम उपरे होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे उपलब्धि उपस्थापना करिथिले। छत्तीसगढ़ सरकारक पक्षरु कृषि विभागर सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार सफल रूपायण संपर्करे आलोकपात करिथिले। यहापरे बिहार सरकारक पक्षरु कृषि विभागर निर्देशक सौरभ सुमन यादव राज्यरे मका उत्पादन ओ बजार संजोग पई होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे आलोकपात करिथिले। द्वितीय अधिवेशनर शेषरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदर महानिर्देशक श्री मंगिलाल जाट समन्वित कृषि प्रणाली संपर्करे निजर प्रस्तुति उपस्थापना करिथिले। अपराह्नरे आयोजित तृतीय तथा उद्यापनी अधिवेशनरे भारतर पूर्व क्षेत्रर विभिन्न राज्यरु आसिथिबा मान्यवर मन्त्रीमाने सेमानकर वक्तव्य रखिथिले। एही क्रमरे पश्चिमबंग सरकारक खाद्य ओ जोगाण मन्त्री श्री अशोक कीर्तनिया निज वक्तव्यरे कहिले
2: मन्त्री जी का पास एक रिक्वेस्ट है हमारा जो हमारा फिशरमैन लोग है आप उसका ऊपर में थोड़ा ध्यान देगा जरूर और हमारा जो बंगाल से जो ऑफिसर लोग आया हम उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करके जा रहा है यही से ये डिपार्टमेंट के जुड़ा हुआ हर सुविधा पश्चिम बंगो का आम जनता को मिलेगा और जितना जल्दी हो सकते हमारा बंगाल को जो जो डिमांड है माननीय मंत्री जी को आप लोग लिख कर देगा पश्चिम बंगो का आम

0: जनता तरफ से हम यही रिक्वेस्ट फिर भी करके जा रहा है, माननीय मंत्री जी हमारा ये डिमांड जरूर पूरा करेगा एवं अगले 5 साल में हम वादा करके जा रहा हूँ यही से बंगाल को हम लोग उस जगह में पहुंच देगा जो जाएगा एक टाइम फार्मर लोगों का इंडिया में था।
1: बिहार राज्यर माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा निज वक्तव्य रे कहिले,
2: आज एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर देश का निर्भर करता है और यह कल्चर कई संदेश भी देता है, कई भावनात्मक जुड़ावों को आज हम जय जगन्नाथ का जिनका दर्शन करते हैं वो तो भी एग्रीकल्चर के प्रसाद से एकादशी जैसे व्रत में भी आज हमारा वह प्रसाद चावल का धान का जिस तरह से जुड़ाव होता है ये लगाव हमारे सांस्कृतिक विरासत को भी बताता है। हम जिस राज्य से आते हैं वह राज्य जनसंख्या में घनत्व के मामले में देश से सबसे ज्यादा, पहले 1106 था अब लगभग 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है जबकि देश में यह 400 के लगभग है। जमीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, घनी आबादी होने के कारण जमीन की कीमत जान से ज्यादा है और वह आजादी के बाद संयोग से बड़ी आबादी हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था। आज कई मामले को हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में देखा, एक नया अभियान भी शुरू किया, संभालने का प्रयास भी किया और आपके इस एग्रीकल्चर का अनुभव को लेके राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में 2 महीने के अंदर जनवरी और फरवरी में 47 लाख से ज्यादा एग्री स्टैक फार्मर आईडी हमने बनवाया कृषि विभाग के सहयोग से, हमारे नवदेश्वर जी प्रधान सचिव के रूप में और सीके अनिल दोनों मिलकर के पदाधिकारी भी पूरी टीम भावना से काम किया। मैं आगे जून तक 30 जून तक रखे हैं कि जो लक्ष्य 87 लाख का है उसको पूरा करने की पूरी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ सरकार को कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग मंत्री श्री राम विचार नेतम तंका वक्तव्य कहिले,
3: छत्तीसगढ़ ने हम लोगों ने जो शुरुआत किया है धान से शुरुआत करके धान के बेहतर प्रोक्योरमेंट से लेकर के उनके मेलिंग की व्यवस्था से लेकर के बाकी चीजें का पैदावार को कैसे हम बढ़ा सकें, तो हम जहां पैदावार भी बढ़ा रहे हैं उनके मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करें, खरीदने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम सब प्रयोग किए हैं अलग अलग से और निश्चित है आपके पहल प्रयास से आपके सहयोग से हम लोगों ने, हम कृषि ही नहीं कृषि के साथ साथ में उद्यानिकी को भी काफी हम बढ़ाए हैं, उद्यान के क्षेत्र में भी हम नवाचार हमारा अलग से हो रहा है और निश्चित ही हमें कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जब हम दूसरे प्रदेश से हम निर्भरता हमारी थी लेकिन आज है कि हम जरूरत के से भी अधिक पैदा जब कर रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी सप्लाई हमारा हो रहा है।
1: परे परे ओडिशार माननीय उप मुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव तांका वक्तव्य रे कहिले,
4: यहाँ पे शिवराज जी हमको जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन को लेके जो एग्री स्टैक की बात कही गई है, हमें जो टारगेट 44 लाख फार्मर्स का हमको जो दिया गया था जिसमें से 17 लाख फार्मर्स का हम कर चुके, बाकी सुबह कहा हमारे सचिव ने कि अगस्त 2026 तक हम बाकी को कंप्लीट कर देंगे। दलन तिलन की जो आपने बात कहा है उस एरिया और प्रोडक्शन को हम पल्सेस का बढ़ा रहे हैं और उसको पीएम आशा के माध्यम से उसको जितना बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। पल्स मिशन CRFM के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव राइस फॉलो मैनेजमेंट स्कीम में 4 लाख हेक्टर हम करेंगे, प्रोडक्शन 2 लाख मेट्रिक टन करेंगे, प्रोक्योरमेंट 20,000 मेट्रिक टन अभी हमने किया है, पेमेंट जो मार्कफेड डायरेक्टली किसानों को देता है। फोकस हमारा रहेगा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे, 2024 से ही ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने 2026-27 में 60,275 हेक्टर कवर किया है, हम 1 लाख

0: किसानों को अमृत अन्न योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, 640 हेक्टेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1280 मेट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन का। बलभद्र जैविक चास मिशन के अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग हमारा हो रहा है। एनएचएम के अंतर्गत 28 कोल्ड स्टोरेजेस हमारे कंप्लीट हुए हैं।
1: यहाँ भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौहान अभिभाषण कहले,
2: किसान भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। ऐसी स्थिति में जो वो काम कर रहा है, उस किसान जो आज भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, पर इसका उद्देश्य मेन यही है कि आखिर इस देश का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए जो काम किया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश भर में जो इसकी प्रशंसा हो रही है और किसानों में विश्वास जगा हुआ है। हम हॉर्टिकल्चर में, हम फल और फूलों में आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। मैं तो कह सकता हूँ कि इसके लिए हमारे ICAR और हमारे KVK और APO ये मिलकर काम करें, क्योंकि KVK कृषि विज्ञान केंद्र वो है जो सीधे किसान से उसका जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो APO 10,000 से अधिक पूरे देश में APO बनाए, यदि वो भी ईमानदारी से काम करें तो मैं कह सकता हूँ कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: तंक परे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर वक्तव्य कहले,
3: मैं दो बिंदु आपसे निवेदित करना चाहता हूँ। बिंदु है अच्छे बीज। हम लोग 22 महीनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अच्छे बीज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, समय पर किसानों को नहीं मिल रहा, उस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को। और दूसरी बात, जब हम स्वस्थ रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेगा तो हम बलवान रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। खेत को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव है जब हम जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती पर हम जोर देना शुरू करेंगे। हम पदाधिकारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब तो आप श्रद्धे प्रधानमंत्री जी का जो नेचर है, उस नेचर को पहचाने हैं और उस नेचर के अनुसार जमीन पर काम करने का कोशिश कीजिए।
1: शेषे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग जुग्म सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल धन्यवाद अर्पण करते।
4: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उड़ीसा सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी आगंतुक मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण सहित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हृदय से आभार। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।
1: एटी शेष करुछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 बेतार विवरणी। नमस्कार।
5: शुणुले पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 संपर्क बेतार विवरणी उपस्थापन समीर मिश्र, वैषयिक सहायता जगह त्रिलोचन बेहरा और सनातन मुर्मू, प्रयोजना राजीव कुमार माउंत। आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्रु। आमर परवर्ती कार्यक्रम अहमिया भाषा गोष्ठी संगीत शिक्षा ओडिया शिक्षादान करिसंती ओम प्रकाश महांती।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅମିୟା ଭାଷାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଓମପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को

0: और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग

0: ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral

0: bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा।

0: बात करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर।

उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद

0: इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इजराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी, और ये पहल कायदे

0: से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: डॉक्टर अंक्रोमा हैड सेड एंड आई कोट, आई एम नॉट अफ्रीकन बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका बट बिकॉज अफ्रीका वॉज बोर्न इन मी। इन द सेम वे इंडिया कैरी अफ्रीका इन इट्स हार्ट, इंडिया एंड अफ्रीका शेयर अ ड्रीम वेर एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज, वेर एवरी वॉइस इज हर्ड, वेर नेशंस राइज टूगेदर नॉट अ पार्ट, लेट अस बिल्ड अ पार्टनरशिप नॉट ओनली फॉर टूडे बट फॉर जनरेशन टू कम।
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है, आतंकवाद को सिरे से ना करना। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत के ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है जो कि जब

0: हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे. एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए. तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है.
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव. वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस. वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस. वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं. COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही. जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीत ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी. हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी. तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि ये एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा. और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है. भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं. ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है.
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते. भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं. आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं. वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है. और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है. यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के

0: अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो व्यापार क्षेत्र में हो उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: स्वाति स्वाति अरे कुआड़ गल
1: माँ तमें मनीष ना कौन मो इतने जोरे डाकिल जे मु चमकी पड़ली हाथ रु चा कपटा खसी पड़ला
0: ओहो देवींकर चाह पीबारे बाधा सृष्टि कले नाही
1: काई नक्तुल
0: तमो प्रोग्राम एकदम रेडी
1: प्रोग्राम को प्रोग्राम
0: सिनेमा
1: मु जिबिनी मो मन भलो नाही एत्ते दूर कटक रु रायरंगपुर आसी जे अन्य किछि काम नाही खाली सिनेमा
0: नाही मु कोन कहतली के घरे बसी एकुटिया बोर तो होछ बाहर टिके बुली आसले माने टिके
1: थाउ तमरी टिके तम पाखरे रख मते कहिलो गनम कण
0: गनम हटात गनम काई तम बापा तो आम घरु किछि पठे नथिले ए माने जहां निहाति दबा कथा टंका हो गोरु हो नहले गणा गांठी हो
1: ए एमती कोन कहू छ म मु पचे रुचि गोटे तमे कहू छ गोटे
0: मु तो सीधा सीधा उत्तर देले भूल कली कोठी गनंग बाबदरे बर पिता कन्या घर को किछि पठाए पांच सूका अर्थात टंकाए 25 पैसा सह किछि गहना नहले दीटा गोरु अच्छा तमे हटात ए सब रमंथन करछ काहे कि कहला ये तो सब आदिवासी संप्रदाय को कथा
1: नाही जे एमती भाबुथिली गोटाए बहिरु पड़िली ए पाखरे कोठी एक प्रकार आदिवासी संप्रदाय अछंती आ जहांका घरे केते रकम बाहागर मध्ये अछि प्रस्तावित बाहा संगा बाहा प्रेम बाहा विधवा बाहा भाउज बाहा
0: छाड़ी गलो जे कन्या अपहरण बाहा
1: इमा तमे केमती जानलो तांकर पुनी दीदी थरे सिंदूर चढ़ा हुए सिंतिरे थरे सूर्य को साखी रखी सखाळे पुनी चंद्र को साखी रखी राती रे
0: भूल कहिलो तिनी थरे
1: सत्तरे
0: आउ कोनो मिच्छरे
2: सूर्य उदय एबा सांग को कराबो आउ सेटा आमो सिंदूर बरो हाथ रे एवं कन्या अंगुड़ी रे लंगा अंगुड़ी रे दुई जन कर रहितो सेटी तांकर मामू ताको हाथ रे धरियो
3: काक
2: बरो को आउ कन्या पटे भी सेई भलिया ता मामू हाथ तोरे धरी थे वो जो अंगुड़ी रे ताकु सिंदूर दिया ही थे वो से अंगुड़ी ताकु धरी थे वो तापुरे से प्रथमे जो उटा प्रथमे वो जो को सिंदूर घसी वो कन्या को नो घसीवा पूर्वरो ताकु भूमि रे चा तिनी थरो
3: किसे पुओ
2: हाँ पुओ
3: भूमि थरो कहीं
2: भूमि रे ये करियो
3: कहीं करा जाए
2: सही टाला अपन करो माटीमा तापुरे वायु आओ तापरे जन्म
3: कला मां
2: को हां
3: तले अपन विवाह समय रे तीन जण साखी रखी पिता सुंदर पिता थी गोटाला माटी मां गोटाला वायु आ गोटाला निजर मां तीन थरो सिंदूर मखाइसला पर कोन हुई
2: तापरे से कन्या को तीन थरो सिंदूर घसीबा संगे संगे हरिबोल शंख होळोळी बाजे
3: गीत
2: हां गीत भी हुए
1: सतरे संबित कित्ते सुंदर कथा कहिला विवाह परी पवित्र बंधन रे माटी मां वायु देवता एवं निजरे जन्मकला मां को साखी रखी पुओ झियो को सिंदूर पिंधे तीनि थार कहिलो आमर कोन इमती अछि मोरन संबित प्लीज कुओ ना माने के कोउ चपरे पाखरे कोठी अछंती बोली मु से मान को देखी भी संबित
0: से माने हेले भूमि जो संप्रदाय एई मयूरभंज जिला रे सेमाने बहुल भावरे देखा जांती भूमिरु जातो बोली सेमानको कुआ जाय भूमिज सेइटा ही तांकर गर्व एई संपर्क रे सुंदर किंवदंतीटिय मध्य अछि
2: कपिल मुनिर जों कामधनु गाइथिले ताकु केतेको दुष्ट प्रकृति लोक ताकु जबरदस्त नै जाउथिले तापरे से कामधनु मुनि पकरे ये कला प्रार्थना कला जे मते एई लोक गुडाकु जबरदस्त नहीं जाऊंती मु कौन करबी आपण मते टिके रक्षा करंतु तापरे कपिल मुनि कहले
3: तू निजे निजे

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती, सम्मान और आपसी

0: विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम।
0: एही संगीत सबु भारतीयंक पई केवल एक संगीत नुहे, ए हेउछि देशवासींकर स्पंदन, एक पवित्र मंत्र। स्वाधीनता आंदोलन बेले सबु संग्रामी मानंक पई वंदे मातरम थिला एक जागरण, एक देशात्मबोध प्रेरणार ध्वनि। आबाल वृद्ध वनिता सबु देशवासींक पई ए संगीत हेउछि राष्ट्रीय एकता, शक्ति ओ देश प्रेमर पवित्र आवेग। एही संगीतकु आम देशर महान कवि ओ उपन्यासिक बंकिम चंद्र चाटार्जी रचना करिथिले 1875 मसीहा नवेम्बर मास 7 तारिखरे। एबे देश पालन करुछि वंदे मातरम संगीत रचनार 150तम वर्ष पूर्ति। वंदे मातरमर अर्थ मा मु तुमको प्रणाम करुछि। एही संगीत 1882 मसीहारे आनंद मठ उपन्यासरे स्थान पाइथिला। 1896 मसीहारे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टागोर एही संगीतको प्रथम थर पाई भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेसर अधिवेशनरे गान करिथिले। 1905 मसीहा बंगभंग आंदोलन बेले एही संगीत देशभक्तिर एक स्वर पलटिगला। स्वाधीनता आंदोलनरे एहा लोकमानक मध्यरे देशभक्ति ओ एकतार जागरण सृष्टि कला। 1950 मसीहा जानुआरी 24 तारिखरे एहार प्रथम द्विपद राष्ट्रीय गीतर स्वीकृति लाभ कला। गीतरे थिबा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम आम देशर प्राकृतिक वैभवको वर्णना करे। एही संगीत देशर सांस्कृतिक ओ राष्ट्रीय जागरणरे गभीर प्रभाव पकाए। आज मध्य एही गीत देशर एकता, निष्ठापरता ओ मातृभूमि प्रति श्रद्धार अमर प्रतीक हो रही।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का

0: शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता।
1: आकाशवाणी कटक परवर्ती कार्यक्रम लेकर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली जुगे ए कार्यक्रम डीटीएच एवं न्यूज ऑन एयर आप माध्यमरे मध्य आपण सुनि पारुछन्ति। आसंतु सुनिबा ओडिया आल्बम रु केतोटी भक्ति गीत। प्रथमे शिल्पी अनुराधा फडवाल।

0: बंद कर बंद कर स्वामी ये भयंकर स्वप्न कहानी मुझे कौन नरे श्रवण कर पारु नहीं
1: तेबे तुमे कुहो प्रिय एपरि स्वप्न देखि मु किपरि स्थिर रहिबी
0: ना स्वामी स्वप्न सत्य हेउ अथवा असत्य हेउ तुमे आसंता काली प्रभातरे यात्रा कर लंकापुर सचक्षरे दर्शन कर पितृराज्य
1: उपयुक्त परामर्श प्रिय आसंता काली प्रभातरे मु यात्रा करिबी स्वर्ण लंका
0: एबे विश्राम कर स्वामी
1: ना आउ चक्षुरे जे निद्रा नाही मु सही परि अपलक नेत्र रे अपेक्षा करूची सूर्योदय को
0: मु मध्य तुम सहित निद्रा रहूची स्वामी

0: मु अवगत हेली भगवती तुमे बलिदान रे संतुष्ट हेब नाही तेबे मु क्षुद्र माछी रूपरे तुम मंदिर रे अवस्थान करूछि जेते बेले राम लक्ष्मण को ए मंदिर को अणा जीवो सेते बेले मु तांक कर्ण रे कहि देबी मोर आगमन रो बाणी
1: ओ शेषरे यही दुख भोग करिबा कुथिला सार असुर महिरावण मोते एवं अनुज लक्ष्मण को बलिदान देव यही मंदिर रे हे भवानी हे शंकरी तुमे कण सते पान करिबो आम रक्त हे बे की बुद्धि करिबा लक्ष्मण

0: किए वीर हनुमान धन्य भक्त धन्य तुमर प्रभु भक्ति
1: इच्छार सेवक को प्रशंसा करंतु नाही प्रभु केवल ए दासर अनुरोध रक्षा करंतु
0: अनुरोध
1: हाँ प्रभु जेतेबेले पापिष्ठ महिरावण आपणंको कहिबो देवींको साष्टांग प्रणिपात कर सेतेबेले आपण कहिबे आम्भे राजपुत्र साष्टांग प्रणिपात करी जानिनाहु तुम्भे निजे करी ताहा सिखाई दियो
0: हाँ तुम निर्देश मु पालन करिबे हनुमान
1: निर्देश नुहे प्रभु अनुरोध
2: अरे हे टोकाजीटा एक जुप कारण निकट ठिया हुआ अरे अरे ए ठाकुर घर कौन दीपल्ली भी जाइछि
3: पुरंजन पंडा
2: मणिमा
3: भोग सामग्री काही मंडा आरिसा काकरा दही केउठि रखिछ
2: हे हे आज्ञा सबुटी एही हांडी टोकेई डाला रे रहिछ आज्ञा ए ये कौन भोग गुड़ा कोला कोड़ी अरे अरे भोग सब कोला कोड़े
3: पुरंजन भोग काही
2: मणिमा मणिमा सब आनी थी मणिमा
3: कौन आनी थी
2: मणिमा आनी थी सब

0: रे निर्बोध रामचंद्र सामान्य दंडवत साष्टांग प्रणिपात तोते जना नहीं सही थे तू गर्वित योद्धार राजपुत्र बोली तेबे देख एई परी करिबु तू साष्टांग प्रणिपात
1: जय मां काली।